हाँ गुरु, देखिएगा समय मिलाइए। स्टूडियो की घड़ी में 5:10, 11:12, 13 सेकंड हुए और कंसोल की घड़ी में 5:26 और 19:21 सेकंड हुए। और कंप्यूटर नंबर 1 सुनाता हूँ आपको।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो।
1: ठीक है, FM स्टूडियो।